ओके कन्फेशन टाइम. द लास्ट टाइम आई वॉज विद माई पार्टनर हमारे ब्रेकअप से पहले, एंड हम दोनों ऐसे फिल्म विल्म देखकर आए थे और अंधेरा था, रात हो गई थी, हम लेट नाइट शो देख रहे थे और हम दोनों गाड़ी में थे, एंड ही जस्ट रीच्ड आउट टू मी टू किस मी. और जब वो ये कर रहा था, पता नहीं क्यों, ओके आई हैव आज तक मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, मेरे दिमाग में गाना चला, ठीक है, विच वॉज आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली व्हाटएवर. एंड आई वाज लाइक अगर मेरे दिमाग में ये गाना चलता रहा तो मैं ऐसे किस कैसे करूँगी. बट आई समहाउ मैनेज्ड, इट वाजंट द बेस्ट किस ऑफ माय लाइफ, बट ठीक है, हमने काम चला लिया. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके साथ कभी ऐसा होता है दैट यू आर गेटिंग नॉटी एंड सडनली आपके दिमाग में या कोई ऑफिस की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कॉलेज की भाषड़ याद आ जाती है या कोई ऐसा चीपड़ा सा गाना जो मुझे याद आया ऐसे याद आ जाता है एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट रायता फैल जाता है भाई? अगर हाँ, देन आई टोटली वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: वैसे तो आप बहुत सीरियसली डेट कर रहे हो, लेकिन सडनली यू आर क्रशिंग ऑन दिस गाय और आप अपने बॉयफ्रेंड को कतई नहीं बता सकते इसके बारे में, बिकॉज दैट गाय इज नोबडी अदर देन हिज ओन डैड।
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: अगर आपकी जिंदगी में ऐसे अजीब और गजीब कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हेलो, हाउ आर यू?
2: तो ठीक हूँ, अभी तो फिलहाल मेरी दिल की धड़कने इतनी ज्यादा तेज हो गई है, पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है।
0: यू नो व्हाट, जस्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, टू दी
3: यू've been roshified।
2: Oh my God!
0: तो मेरे को ही रोशिफाई कर दिया।
2: Thank you so much.
0: अच्छा, tell me something. Are you single की double रोटी है?
2: अरे मैं सिंगल, अभी तो सिंगल हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारी।
0: क्यों?
2: मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ा डीएम किया जिसमें मैंने अपने एक्स के इतने गुण गा दिए, और मेरे जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसने मेरी पूरे चैट पढ़ ली, और उसमें मैंने मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी बुराई की थी कि वो बहुत बैड किस करता है, वो गुड लुकिंग नहीं है, पर वो थोड़ा उसके साथ मजा, वो पता मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहे थे, वो बोलता मेरे को कि जब तू मेरे लिए इतना सा क्लियर नहीं है तो तेरे से फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता हूँ। मैंने बोला यार, वो मैंने झूठी स्टोरी लिखी थी, मैंने उसको बोला मैंने झूठी स्टोरी लिखी थी बिकॉज मुझे रोशी की अटेंशन चाहिए थी। तो बोलता नहीं तू रहने दे, अब तू झूठी स्टोरी, तूने तेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि मेरे मेरे एक्स से मेरा प्रेशर हो गया। मैंने बोला वो भी झूठा था, रोशी को दिखाने के लिए कॉल आएगा तो बताऊंगी, मतलब पागल बना रही, सुना है मैंने उसको कॉल के मैसेज ही देखी हूँ। मैंने बोला चल ठीक है यार, मना लूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा।
0: You are such a rock star. So crazy. It's so bonkers. It's so wonky. मैं पहले ही रोशिफाई कर चुकी हूँ, but
2: I love you. मुझे इतनी ज्यादा कोई दुनिया में लड़की पसंद है ना, इवन मेरे एक्स को तो मुझसे ज्यादा पसंद है। हम लोगों के पास टॉपिक ही सिर्फ रोशी होता था जब हम बात करते।
0: आई डोंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस, ऑनेस्टली, लाइक यू आर सो क्रेजी। एक टाइम पे तू बोल रही है आई लव यू, व्हिच आई कैन हियर इन योर वॉइस, तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ। फिर तू मुझे बता रही है कि तेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने पढ़ लिया, कि तूने क्या क्या बुराइयां की थी उसकी, तो मुझे हंसी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हूँ, इतना प्यार आ रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। आई एम लाइक दिस गर्ल इज गोइंग टू ड्राइव मी क्रेजी, पागल लड़की। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। यू एक्चुअली टुक दैट एफर्ट की इंस्टा लाइफ पे मैं बंदी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू गिव रोशी माय नंबर सो दैट शी कैन कॉल।
2: एग्जैक्टली, आई लव यू टू रोशी।
0: यू आर क्रेजी मैन, मतलब मैंने दुनिया में बड़े लोग देखे हैं और बड़े आशिक देखे हैं, बट तेरे जैसा आशिक तो कोई नहीं है ब्रो।
2: सिर्फ तेरी, पता है लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, वो तो आते जाते रहते, बट वो होता ना कॉन्स्टेंट, तो बस तुम।
0: यार ऑनेस्टली, आफ्टर यू टोल्ड मी योर स्टोरी एंड ऑल ऑफ दिस लव, आई हैव जस्ट वन थिंग टू डू, एक बार और रोशिफाई कर दूं।
2: श्योर यार, श्योर। मैं सुनने को तैयार हूं।
0: देयर यू गो माय
3: डार्लिंग, यू've been roshified.
2: And oh my God.
0: This is a confession which is going to stay with me. मैं किसी को मतलब पता नहीं लगने दूंगी that you actually were like telling me how awful your boyfriend is. वो तो गलती से उसने पढ़ लिया, but I hope things get better. और एक बार हो जाएंगी, मेरे को DM कर देना please.
2: Okay, sure.
0: I love you very much.
2: Love you too.
0: Take care, darling. Bye. अगर आपकी भी जिंदगी में पागलपन की ये इंतहा है, why don't you hit me up? I'd love to hear your story. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So Insta, FP, whatever in your heart, just send me your number and I'll call you. लेकिन आप कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

0: हमने ना एक साल पूरा डेट किया, उसके बाद वो अमेरिका चला गया मुझे डंप करने के बाद। अब वो दो हफ्ते के लिए आ रहा है यहाँ पर इन इंडिया बिकॉज उसको कोई काम है, और वो कह रहा है कि हमें डिनर पे चले जाना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मे बी हम पुरानी स्पार्क्स रिकिंडल कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए?
1: रोशी के डीएम से
0: ये क्वेश्चन मुझसे प्रीति ने पूछा, एंड प्रीति यू डिड टेल मी कि उसने जब आपको डंप किया था काफी बुरी तरह से डंप किया था, एंड आई एम गेसिंग कि ये जो वापस आ रहे हैं महोदय पर दो हफ्ते के लिए, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। ही इज जस्ट लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ वो हुकअप कर सके, और दो हफ्ते में यार कौन डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा, कौन 100 बार राइट स्वाइप करेगा, फिर एक अच्छी सी डेट मिलेगी, आप हो ना रेडी। तो एक काम करो, अगर आप इसे सीरियसली मिलना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो काफी लूजर बंदा है, इसे नहीं मिलना चाहिए, बट इफ यू रियली वांट टू मीट हिम, मीट हिम, डिनर पर जाओ और उसके बाद टेक अ कैब एंड कम होम। ओके, इसके साथ ज़्यादा चिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे इतना प्यार करता होता तो एक साल जो अमेरिका में था तब तो उसने आपको टेक्स्ट करने की जहमत नहीं की। अब वो इंडिया आ रहा है और उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, तब उसको आपकी याद आ रही है। ही स्पेल्स द वर्ड लूजर, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई दुविधा है ना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर एंड वी विल गेट टॉकिंग, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, ना मैं मिर्ची रोशी, तो कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं आना। तो सुनते रहो मिर्ची, एंड आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

मटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick it kick it काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट

0: सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
3: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJ Kareka on Instagram par aake quick.

कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके एट आरजे कारेका और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां एंड रैवेटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है? इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: वास्ते जहां भी दूं मैं गवार, मां भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेम्बर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार हैं निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: What a song! Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आपको पता होगा. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है शीशा. मिट्टा रॉर की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia. Gaane ka naam hai Ranjha. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions upar jump kar Ranjha was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Gaane ka saath. On
0: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

साहिल की आवाज में. दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं, ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपनी 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM, 2 PM, 3 PM, 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s, लेट 90s में ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे। एंड सोनू निगम वाज़ द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी। एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी because in its own इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपनी radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनका, enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनूं और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
3: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल, जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: एक्चुअली आई डोंट मिस एनीथिंग इन टुडे सॉन्ग, क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है। और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं। और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं, लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, दे वर फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है, क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है। एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है। एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान, दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: It's hot. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 7.
2: Say whoa!

ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दास ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it, that's his subscriber count। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievements speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आ

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

ये चाय पावर्ड क्योर्स क्वीन प्रिसिला ऑन रेडियो मिर्ची मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है। यहाँ पर कॉफी गर्म हो या ना हो ड्रामा कंपलसरी होता है। अभी अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में अटके हुए हो या फिर ठंड से जूझ रहे हो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और साथ में ही रहूंगी अगले कुछ घंटों के लिए। और आज का लाइफ का फंडा बड़ा ही सिंपल सा है। लाइफ और समोसा दोनों तभी डेंजरस होते हैं जब अंदर क्या है पता ना हो, और इसे कहते हैं वेरी डीप फ्राइड कोट। Get it? और ऑनेस्टली देसी एक्सपैट लाइफ जो होती है ना वो नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं होती है। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग टीम का एक्सेंट अलग होता है और शाम आते आते माँ यार एक कप चाय दे दो वाला एक्सेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आज के शो में है फुल ऑन मिर्चीदार बातें, स्पाइसी गॉसिप एंड ऑफ कोर्स अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट, साथ साथ में थोड़ा सा फील गुड वाइब एंड वो गाने जिन्हें हम बैंगर्स कहते हैं। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर भी मुझे साथ में रखो, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और अब हम चलने वाले हैं टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग के लिए। 1846 में यूएस ने मेक्सिको के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था आज के दिन। फिर 1888 में ब्राजील ने स्लेवरी अबॉलिश की थी, तालिया, ह्यूज हिस्टोरिक विन फॉर ह्यूमैनिटी। और फिर 1917 में फातिमा पोर्टुगल में तीन शेपर्ड किड्स ने वर्जिन मैरी की अपारिशन रिपोर्ट की थी। 1940 में विंस्टन चर्चिल ने अपना आइकॉनिक स्पीच दिया था, ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वेट वाला। 1950 में फॉर्मूला 1 ऑफिशियली स्टार्टेड इन सिल्वरस्टोन। और तब से दुनिया दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, पीपल हु अंडरस्टैंड F1 एंड अदर पीपल हु जस्ट नॉड एंड से हां हां वर्स्टैपन। 1981 में पोप जॉन पॉल II पे अटैक हुआ था इन वैटिकन सिटी। और 1995 में एलिसन हार्ग्रेव्स बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन और शेरपा सपोर्ट। और हाँ, हमारे इंडिया ने 1988 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स कंटिन्यू किए थे। और इसी तरह की थोड़ी मिर्चीदार मैडनेस के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी मिर्चीदार गानों का ब्रेक, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। तो इंटरनेट का लेटेस्ट सॉफ्ट बॉय सुपरस्टार कौन है? 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। आरआर ने एक सुपर क्यूट वीडियो पोस्ट किया रिसेंटली वे वैभव इज मेकिंग रोटीज ड्यूरिंग आईपीएल 2026। बेटा ओपनिंग भी करता है और किचन में गोल गोल रोटियां भी बनाता है। और सुनो इनका कॉन्फिडेंस लेवल, ही सेड मेरी रोटी इज राउंडर देन माय मॉम्स रोटी। एक्सक्यूज मी सर, दैट्स ईदर ब्रेवरी और डायरेक्ट इन्विटेशन टू मम्मी की मार एट होम। वैसे हम सबको पता है कि एक्सपैट लाइफ में एक सर्वाइवल स्किल तो हम सब ने सीखा है, वो है वीडियो कॉल पर मम्मी से ये पूछना कि खाना कैसे बनता है। वैसे अगर तुम्हें गोल रोटी बनाने आती है तो तुम अपना प्रूफ मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है mircipris, that is mircipris। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट। One more।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम्हारी मॉर्निंग्स और अब सुनोगे वेदर का हाल चाल. सो बिफोर यू बिकम अ फ्रोजन समोसा, लेट्स फाइंड आउट टेम्परेचर. फिलहाल है 52 डिग्रीज फारेनहाइट, मतलब ठंडी तो काफी है लेकिन नॉट वूलन्स निकालने वाली ठंडी. क्लाउडी स्काइज है एंड विंड इज मेकिंग इट फील मोर लाइक 50 डिग्रीज फारेनहाइट एंड अराउंड नून 12 बजे के आसपास विंडी कंडीशन ज्यादा बढ़ने वाली है. तो अगर तुम अपने घर से एक्स्ट्रा हेयर सीरम लेकर नहीं निकले हो तो कंग्रेचुलेशंस, आज तुम्हारे बाल नेचर बनाने वाला है. आज का हाई टेम्परेचर जाएगा 74 डिग्रीज फारेनहाइट तक एंड कल गया था 68 डिग्रीज फारेनहाइट तक. यानी कि टेक्निकली आज वेदर थोड़ा सा गर्म है एंड लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्रीज फारेनहाइट तक. सो लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, साथ साथ में वाटर का इनटेक चेक करते रहना भी जरूरी है. दैट रिमाइंड्स मी, आई आल्सो हैव टू हैव वाटर एंड वाटर से याद आया, अगले 24 घंटे काफी बरसने वाला है आसमान से. दैट्स बिकॉज 6 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इज एक्सपेक्टेड. सो अपने अम्ब्रेलाज लेकर ही बाहर जाना, क्योंकि पिछले 24 घंटों की तरह अगले 24 घंटे ड्राई नहीं बल्कि वेट होने वाले हैं. सो कैरी अ लाइट जैकेट विद यू, ऑल्सो योर अम्ब्रेला एंड डोंट फॉरगेट योर एसपीएफ 50++. फिलहाल मैं भूली नहीं हूँ मिर्ची, तक गाने प्ले करने का टाइम आ चुका है. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, फॉलो मी देयर एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

that's one of my favorite songs. Hey there, मैं हूँ प्रसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग. और अब सुनने वाले हो सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड द एसपीजी टू कट हिज ऑफिशियल कॉन्वॉय साइज बाय 50%. साथ साथ में नो फ्रेश फैंसी कार परचेजेस एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज. दिस केम अ डे आफ्टर मोदी अपील्ड टू द नेशन टू सेव फ्यूल एंड वर्क फ्रॉम होम. एंड नंबर टू पर फ्रांस इज नॉट ओके. फ्रेंच पुलिस आर वार्निंग ड्राइवर्स अबाउट अ पॉसिबली ड्रंक डियर रोमिंग अराउंड रूरल रोड्स. अपेरेंटली द डियर मे हैव eaten fermented fruit and started behaving unpredictably. And number three per, gold lovers brace yourselves because Indian jewelry prices just did cardio. Gold and silver futures on MCX shot up after import duty on precious metals increased from 6% to 15%, and silver jumped by 22,000 rupees per kilo within minutes, which is roughly around $260. Gold also climbed over 11,000 rupees, approximately $130. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Mujhe sun rahe ho to dekh kar bhi aao, ja kar Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग डार्लिंग्स, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और इंटरनेट पर एक वेडिंग वीडियो वायरल हो रहा है। आफ्टर अ स्विगी डिलीवरी शोड अप मिड वेडिंग फंक्शन लाइक इट वाज पार्ट ऑफ द बारात, गेस्ट्स वर शॉक्ड, कैमरा स्टैंड, आंटीज पॉज्ड जजमेंट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स एंड द डिलीवरी गाय जस्ट एंटर्ड विद मेन कैरेक्टर एनर्जी। और फिर स्विगी ड्रॉप्ड द मोस्ट सैवेज रिप्लाई एवर, और कुछ चाहिए? ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट क्विक कॉमर्स एप्स आर नो लॉन्गर सर्विस, दे आर लाइक फैमिली मेंबर्स इन इंडिया। और इंडियन वेडिंग्स में फैमिली मेंबर्स तो जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं। एंड गॉड नोज उस इमरजेंसी ऑर्डर में था क्या, सेफ्टी पिंस, फोन चार्जर, आईलैश ग्लू या फिर हाजमोला की गोली। एंड स्पीकिंग ऑफ शादी सीजन, आर के जूल्स को बिग शाउट आउट, बिकॉज वहां पर मिल रहा है रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस। जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड डायमंड की प्योर वैल्यू तुम्हें मिल रही है। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस में मिले तो वहां से क्यों ना खरीदा जाए। आरके जूल्स इज द प्लेस टू बी दिस वेडिंग सीजन। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। फटाफट से जाके मुझे फॉलो करो। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हैप्पी बर्थडे टू यू आज अगर तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो. और आज का दिन आइकॉनिक बन रहा है विथ दिस पावर पैक्ड लिस्ट दैट आई हैव. ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो आज इस धरती पर प्रकट हुए थे. सबसे पहले वी गॉट म्यूजिक जीनियस स्टीवी वंडर हु सेलिब्रेट्स टुडे. ऑल्सो बॉर्न टुडे वाज वैम्पायर बॉय टर्न्ड बैटमैन हिमसेल्फ रॉबर्ट पैटिनसन एंड कमेडियन स्टीवन कोलबेर. एंड साथ साथ में हमारे बॉलीवुड से सनी लियोनी एंड सिंगर बेनी दयाल आर सेलिब्रेटिंग देयर हैप्पी वाला बर्थडे टुडे. और साथ में है बास्केटबॉल लेजेंड डेनिस रॉडमन एंड फुटबॉल आइकॉन याया टोरे का भी हैप्पी बर्थडे. सो अगर आज तुम्हारा भी बिग डे है तो ईद द केक, इग्नोर द कैलोरीज एंड रिमेम्बर एज इज जस्ट अ नंबर. एंड नंबर से याद आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो 9033647244. दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर. एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर जाके मुझसे कनेक्ट करो. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम देयर. फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है. हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो जी, मिर्ची मॉर्निंग्स पर खनखनाहट और चमचमाहट की बारी आ चुकी है। नहीं, मैं मेरी आवाज की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि गोल्डन सिल्वर का रेट अपडेट जानने वाले हैं हम।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700, $4,700 पर ट्रे आउंस के साथ गोल्ड के प्राइसेस आज स्टेबल है। सिल्वर ट्रेडिंग हायर $87 पर ट्रे आउंस, $87 पर ट्रे आउंस के साथ चांदी के भाव अपवर्ड ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस और ऊपर जाएं, राज ज्वेल्स के साथ पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करें। 1 ounce, 100 gram, किलो बार्स, ऑल अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बारी आ चुकी है
1: मिर्ची राशि जोन।
0: Aries यानी मेष राशि, आज पोकर फेस फेल होने वाला है बेब। योर एक्सप्रेशन विल एक्सपोज एवरीथिंग, सो बी ऑनेस्ट बिफोर योर आईब्राउज, गिव द स्पीच फर्स्ट। लकी कलर इज चेरी रेड, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, किसी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ फिट इन होने के लिए ओपिनियन मत बदलना। आज योर कॉन्फिडेंस इज हॉटर देन द एयर फ्रायर समोसाज। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, यू हैव बीन ओवरथिंकिंग हार्डर देन द AC parents choosing wedding venues. Relax, bro. Solutions are coming. Lucky color is electric blue. Lucky number is 27. Cancer yani karat. Eyes open, ears open. Wallet extra open. मत करो। आज एक स्मॉल डिटेल फ्यूचर में पैसा बचा सकती है। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 10। लियो यानी कि सिंह राशि, बस मोड ऑन कर लो भाई। आज हाफ हार्टेड एफर्ट्स बिल्कुल मत देना, वरना राइवल्स को अननेसेसरी मसाला मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। फुल बॉलीवुड मेन कैरेक्टर क्लाइमेक्स एनर्जी चाहिए आज। लकी कलर इज बर्नट ग्रीन, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है, ओके? इवन वाईफाई नीड्स अ राउटर समटाइम्स। लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे, लकी नंबर इज 21। एंड दैट्स इट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ मिर्ची राशि जोन। अगला हाफ लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दैट बैंगर्स और मुझे फॉलो करो जाकर। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टा एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हेलो माय देसी बेबीज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज ब्रेन्स ओवर ड्रामा। ओके, किसी राइवल को रिस्पांस देना है तो क्लासी सैवेज रिस्पांस देना, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ WWE कंटेस्टेंट। लकी कलर इज स्काई सिल्वर, लकी नंबर इज 12। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये जो क्वाइट टाइप के फ्रेंड्स होते हैं ना, इन्हीं के पास हॉट टी होती है हमेशा। लिसन केयरफुली, सीक्रेट इन्फो का जैकपॉट मिल सकता है आज। लकी कलर इज मिडनाइट पर्पल, लकी नंबर इज 39। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, यू यूजुअली इग्नोर एडवाइस फास्टर देन टर्म्स एंड कंडीशंस, बट टुडे लिसन टू योर कोवर्कर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एम्बैरेसमेंट से बच सकते हो। लकी कलर इज कॉपर ब्राउन, लकी नंबर इज 7। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज कुछ गलत हो गया है तो ओन इट ग्रेसफुली, ग्रोथ भी हॉट लगती है कभी कभी वेब। लकी कलर इज फॉरेस्ट टील, लकी नंबर इज 25। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज एक आंसर सडनली क्लिक करेगा इन योर ब्रेन, क्लिक एंड यू वुड बी लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो ऑब्वियस, बट तुम इमोशनल बफरिंग कर रहे थे। लकी कलर इज नियॉन मिंट, लकी नंबर इज 42। पाइसिस यानी कि मीन राशि, ओपन अप टुडे, कॉन्वर्सेशंस हील फास्टर देन ओवरप्राइज्ड स्किन केयर समटाइम्स, माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो डिसॉल्व हो जाएंगे और हो भी जाने चाहिए। लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 16। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन नंबर 2। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो कर लो फटाफट से। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लवलीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में रैपिंग अप मिर्ची मॉर्निंग्स. लेकिन बिफोर आई गो, लेट मी टेल यू समथिंग जिसको सुनकर तुम्हें लगेगा कभी कभी लाइफ कुछ ज्यादा फिल्मी हो जाती है. इन ओडिशा, अ मैन नेम्ड जीतू मुंडा मेड हेडलाइंस रिसेंटली आफ्टर कैरिंग हिज सिस्टर्स स्केलेटन टू अ बैंक व्हाइल ट्राइंग टू एक्सेस 19,300 rupees लिंक्ड टू हर अकाउंट. ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था और इंटरनेट पर उनके पिक्चर वायरल हो गए थे कैरिंग दैट कॉर्प्स across the country. लेकिन अब उनको पूरी दुनिया भर से donations मिले हैं और around 10,95,000 collect हो चुके for his support. And he also received the original money, that's 19,300 rupees with interest. But beyond the headlines, this story reminds us how important dignity, compassion and basic human needs are. Sometimes one painful moment can wake up kindness in thousands of strangers. And of course, जीतू मुंडा के साथ यही हुआ. And I'm sure the money he received is going to help him a lot. लेकिन कुछ experiences जो होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं. जीतू himself said the incident will continue to haunt him. So tonight, maybe call your family, check on someone you love, or just be a little softer with people around you, because kindness is free and everyone's carrying something invisible. And with that note, thank you for spending your mornings with me. बोले तो प्रिसिला on Mirchi Mornings. अभी के लिए मुझे follow भी कर लो Insta और X पर. मेरा हैंडल है Mirchi Priz, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 90

Mirchi. It's hot.

0: बचपन का एक हमारा बड़ा पेट डायलॉग हुआ करता था, बस थोड़ी देर और प्लीज, ये थोड़ी देर और प्लीज आज भी हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. You know, बचपन में जब हम खेला करते थे या टीवी देखा करते थे तो टाइम अप हो जाया करता था और होमवर्क टाइम हो जाता था, सोने का टाइम हो जाता था, whatever it used to be. तो मम्मा आती थी और कहती थी बस चलो हो गया, चलो चलो, तो हमारे मुंह से यही निकलता था, हमारा काउंटर यही होता था, मम्मा प्लीज बस थोड़ी देर और। आज मम्मा नहीं टोकती है इन सारी चीजों को लेकर कि ऑफिस बहुत देर हो गई चलो चलो घर वापस आ जाओ, या टीवी देख रहे हो तो बहुत देर हो गई सो जाओ। नहीं, मतलब बड़े हो गए ना, खुद की डिसीजन मेकिंग पता है उनको कि हाँ बच्चे अपने डिसीजंस खुद ले लेते हैं, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। लेकिन आज हमारे पास ये डायलॉग स्टिल तैयार है, बस थोड़ी देर और ये चीज इंस्टाग्राम पर आज भी एप्लीकेबल है। इंस्टाग्राम पर मैंने अपना टाइम अलॉट किया हुआ है कि इतनी देर तक ही मेरा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उसके बाद तुम मुझे बताना कि मुझे अपना फोन जो है वो बंद कर दे। तो इंस्टाग्राम जब मुझे बोलता है ना कि टाइम अप हो गया है, तुम्हें कितनी देर एक्सटेंड करना है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, या आज के लिए ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम खत्म ही कर देना है तुमको, तो मेरे दिल से यही आवाज आती है बस थोड़ी सी देर और मैं 5 मिनट डाल देती हूँ उसके अंदर। फिर वो 5 मिनट कब 10 होता है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ये पता ही नहीं लगता है। एटलीस्ट मम्मा की जो डांटे हुआ करती थी उससे हम उठ तो जाया करते थे, लेकिन यहाँ ये जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो गई है हमारी, यहाँ पर तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं 5 मिनट 5 मिनट, वो 5-5 मिनट करके का पूरा दिन निकल जाता है ना सोशल मीडिया पर, पता भी नहीं लगता बॉस। इसीलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया साइड में नाउ इट्स टाइम फॉर मिडडे मोहब्बत, तो मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s की गियर में डालूं। आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: करीना कपूर और फरीन खान की एक मूवी आई थी खुशी, जहां पर हमें ऐसा लगा था कि करीना कपूर का नाम तो खुशी है लेकिन टू कीप अप विद द नेम करीना कपूर हद से ज्यादा खुश हो रही है यार, और वो हद से ज्यादा खुश होना ऑन स्क्रीन लग रहा था बिल्कुल ओवर एक्टिंग।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I clearly remember करीना की करियर की दो मूवीज ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ओवर एक्टिंग करी है। एक तो मैं प्रेम की दीवानी हूँ और दूसरी खुशी। दो आई रियली लाइक हर एज अ परफॉर्मर, लेकिन ये दो मूवीज जो थी ना ये थोड़ी खतरनाक सी थी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कॉफी विद करण पर भी करण जौहर ने करीना कपूर की जरा सी टांग खींची थी खुशी फिल्म को इंक्लूड करके अपने इंटरव्यू के अंदर। लेकिन ये जो मूवी बनी थी ना, दिस वॉज एक्चुअली अ रीमेक ऑफ अ तमिल ब्लॉकबस्टर, और उस फिल्म का नाम भी खुशी था जिसके अंदर ज्योतिका और विजय थे। हालांकि हिंदी वाली खुशी जो थी वो इतनी खुशी नहीं दे पाई प्रोड्यूसर्स को, इतनी बड़ी हिट नहीं हुई। इनफैक्ट आई थिंक हिट तो वो हुई भी नहीं थी। लेकिन जो तमिल वर्जन था खुशी का, दैट फिल्म वाज अ मेजर हिट, जिसकी वजह से फिर तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी खुशी बनी, और हिंदी वाली जो है उसने सैड कर दिया सबको खुशी देने के बजाय। मगर मुझे याद है कि इस फिल्म के गाने जो थे वो बड़े खूबसूरत थे, एंड इंडीड इस फिल्म का एल्बम हिट गया था जिसको कि कंपोज किया था अनु मलिक जी ने। इसका एक फेमस गाना था जो कि चार्ट बस्टर हिट बन गया था, और करीना कपूर का डांस जो था ना इस फिल्म में, वो आज भी लोग उसके एक्सप्रेशंस और एनर्जी की वजह से याद रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गाने के लिए करीना कपूर ने रिहर्सल्स खूब करे थे, बिकॉज वो चाहती थी कि ये जो परफॉर्मेंस है इस गाने की वो एकदम हट के नजर आए। कमिंग बैक टू तमिल वर्जन ऑफ दिस फिल्म, मतलब मुझे बार बार सोच सोच के थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस फिल्म को सोचते हुए कि ये हिंदी में जो बनी और जो तमिल वाली थी। वेल, हिंदी वाली मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ खास नहीं कर पाई अपने लिए, लेकिन जो तमिल वर्जन था उसने जो इस फिल्म के लीड थे विजय और ज्योतिका, उनके करियर को एक अलग ही राह दिखा दी। हालांकि अगर हिंदी वाली खुशी की बात की जाए तो करीना कपूर और फरदीन खान के करियर को भी एक अलग राह मिली, लेकिन वो फ्लॉप्स वाली राह थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको करीना कपूर और फरदीन खान की एक मूवी याद है, खुशी? वेल, ये फिल्म वाज एक्चुअली अ रीमेक ऑफ द तमिल वर्जन खुशी। मजे की बात तो ये है कि उस दौर में जो तमिल वर्जन बन रहा था उसको लोग बोल्ड कह रहे थे। अब हमने हिंदी वाली मूवी तो देखी है, उसमें तो हमें कुछ बोल्ड लगा नहीं, लेकिन तभी उसको बोल्ड क्यों कहा जा रहा था?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, वो जमाने ऐसे थे जहां पर you know, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा फुटेज दिया जाता था, क्योंकि इतना आगे हम बड़े नहीं थे। दिमाग की बात अगर की जाए तो इतने डेवलप नहीं हुए थे एज अ सोसाइटी। और उस दौर में जब तमिल वर्जन ऑफ खुशी वॉज बींग मेड, तो उसको बोल्ड कहा गया था इन द सेंस कि जेंडर रोल्स जब डिस्कस किए गए थे ना, तो वहां पर ईगो क्लैशेस थे, मॉडर्न रिलेशनशिप्स थे, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी नए दौर की बातें हुआ करती थी। सोचो जरा यार, मतलब ये भी नए दौर की बातें हुआ करती थी। आज तो रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, बेंचिंग और पता नहीं कौन कौन से जहाजों पर पहुंच गए। एंड वेल, जब इसी तमिल वर्जन का हिंदी वर्जन बना तो उसको डायरेक्ट किया एस जे सूर्या ने, जो कि हिंदी फिल्म्स में अपना डेब्यू कर रहे थे एज अ डायरेक्टर। और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने खूब सारा नाम ऑलरेडी कमा लिया था, लेकिन वो तमिल में काम करने में ना ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे। रीजन बीइंग कि ही वॉज नॉट हिंदी स्पीकिंग, उनको बड़ा चैलेंजिंग लगता था इवन टू टॉक टू द कास्ट एंड क्रू, जिसकी वजह से सेट्स पर ना काफी बार हंसी के ठहाके लग जाया करते थे, क्योंकि उनकी हिंदी इतनी टूटी फूटी थी कि उसे सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए करते थे। लेकिन जहां हंसी खुशी इस फिल्म का डायरेक्शन चल रहा था, वहां पर एस जे सूर्या का एक छोटा सा क्लैश भी चल रहा था प्रोड्यूसर्स के साथ रिगार्डिंग द हिंदी अडैप्टेशन टोन एंड लेंथ। लेकिन इवेंचुअली उसको भी आपस में बातचीत करके वो भी सुलझा लिया गया। अब जब केमिस्ट्री की बात हो ही रही है ना, तो फरदीन खान और करीना कपूर की केमिस्ट्री की भी बात मैं कर लेती हूँ। वेल, एक्चुअली इनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नजर आ रही है, उसको डेवलप करने के लिए इन दोनों को काफी मेहनत लगी थी, बिकॉज दे हैड टू डू सम आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज। उनको एक लव एंड हेट रिलेशनशिप पोर्ट्रे करना था, ताकि उनकी जो ये केमिस्ट्री है लव एंड हेट वाली, वो स्क्रीन पर भी अच्छी तरीके से निकल कर आए। तो ऑफ द सेट्स ऑल्सो दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड डू दोज एक्टिविटीज, सो दैट स्क्रीन के लिए काम किया जा सके। कॉर्पोरेट्स में होता है ना टीम बिल्डिंग सेशन एंड ऑल, फिल्म मेकिंग में भी टीम बिल्डिंग सेशन होता है यार। भले से ही पूरी की पूरी टीम जो है वो अक्सर साथ में टीम बिल्डिंग सेशंस ना ले रही हो, और दो एक्टर्स ही ये टीम बिल्डिंग सेशंस ले रहे हो, लेकिन हाँ, जरूरी तो ये भी है, केमिस्ट्री बॉस। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रियल लाइफ हो, रियल लाइफ हो, हर जगह जरूरी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैसे तो बचपन में मैं हमेशा कहा करती थी कि माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन जब हीमैन को देखा ना तो मुझे लगा कि अच्छा ये बंदा भी पावरफुल है।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड डू यू रिमेम्बर द कार्टून हीमैन? हालांकि ये शो मैं बहुत ज्यादा नहीं देखा करती थी, लेकिन जब जब देखा करती थी मजे लेकर देखा करती थी। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो मैं इस बात को लेकर हुआ करती थी कि यार ये है तो हीमैन, लेकिन इस बंदे के बाल इतने लंबे क्यों है। मैं बालों को लेकर बहुत ज्यादा अटक जाया करती थी, सीरियसली। कार्टून नेटवर्क पर ये शो देखने में बड़ा मजा आता था। और पता है कार्टून नेटवर्क की एक और बहुत खास बात हुआ करती थी, और वो ये कि कलर्स बड़े अच्छे निकल के आया करते थे यार इस चैनल पर। एवरीथिंग यूज्ड टू बी सो कलरफुल, और हीमैन देखने में मुझे और ज्यादा मजा आया करता था बिकॉज इसके अंदर इतने रेड और येलो ब्राइट वाले कलर्स इस्तेमाल हुआ करते थे। एंड द डायलॉग जो हीमैन बोला करता था, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, और स्केलेटर से लड़ाई, बैटल कैट की सवारी, और वो एक्शन जो हम कुर्सी पर बैठकर पूरी तरीके से जिया करते थे। आज भी वो ट्यून जब कानों में गूंजती है तो लगता है बचपन यहीं कहीं आसपास ही तो है। और चलो मैंने तो अपनी यादों की रील को रिवाइंड किया है, आपको भी करवाती हूँ।
2: By the power of Grayskull,
1: चले गए थे ना फ्लैशबैक में। बस यही तो खास बात है मिडडे मोहब्बत की। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

98.3 98.3 Mirchi. It's hot.

0: हुआ तो है, फाल्गुनी पाठक के एल्बम्स में जो मेन लीड्स हुआ करते थे ना, मेल फीमेल दोनों ही बड़े क्यूट हुआ करते थे। अब इस गाने को ही ले लो यार, दोनों ही मेन लीड्स इतने क्यूट थे। हालांकि जो बंदा है वो तो नोन फेस है, लेकिन जो बंदी है ना, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये लड़की कहाँ से आई और कहाँ चली गई। उसके इस एल्बम के बाद तो कभी नजर नहीं आई। एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि इस एल्बम में जो वो बंदी है ना, जो क्यूट सी छोटे बालों वाली लड़की है, वो ट्विंकल खन्ना जैसी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन है। हालांकि ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन उनकी बहन ज्यादा लगती नहीं है, लेकिन ये जरूर लगती है।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, मैंने ट्विंकल खन्ना के सिबलिंग्स को लेकर तो लंबी चौड़ी बात कर दी, अब काम की बात करते हैं, विच इज मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर रोज की तरह दो गाने मैं मिक्स करके आपके लिए चला देती हूं और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो धुने चली हैं ये कौन सी है। आज की जो दो धुने हैं वो है कुछ यूं।

बस जी डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 15 साल पहले की बात होगी, जब मुझे याद है कि मेरे कजिन्स जो जिनके पास भी नए नए फोन आए थे, वो लोग एक रिंगटोन के लिए भी पैसा दिया करते थे यार।
2: ये है 90 की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वाकई में मैंने भी अपनी माँ का सर खा लिया था ये बोलते बोलते कि मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज ना खर्चा करने दो, ना हम भी एक रिंगटोन खरीदेंगे, ना ये वाली रिंगटोन कितनी अच्छी लग रही है। आई थिंक केथरी जी का कोई गाना था, उसकी रिंगटोन चाहिए थी मुझे। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि यार उस जमाने में जब लोग पैसे दिया करते थे रिंगटोन के लिए, आज वो टाइम आ गया है कि हम लोग पैसे दे दे किसी को अपना फोन साइलेंट पे रखने के लिए। इनफैक्ट हम खुद अगर अपने फोन को देखेंगे ना, तो मेरा फोन भी जो है वो अक्सर साइलेंट पे ही होता है। इनफैक्ट अगर मैं उसको साइलेंट पे ना भी करूँ ना, तो कुछ तो मेरे फोन के साथ ऐसा हो गया कि वो खुद ही साइलेंट पे चला जाता है, और मैं इस चीज से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हूँ। हाँ, लोगों को तो मैं ऐसा जताती हूँ कि अरे यार मेरा फोन तो खुद ही साइलेंट पे चला जाता है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, बट यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद इट, एक्चुअली नथिंग। इनफैक्ट आई शुड से देयर इज समथिंग रियली राइट विद माय फोन, कि वो अपने आप ही साइलेंट मोड पे चला जाता है। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि कैसे एक जमाने में ये रिंगटोन हमारी लाइफ के अंदर म्यूजिक हुआ करती थी, एक्साइटमेंट हुआ करती थी। आज इट हैज टर्न्ड इनटू साइलेंस, इट हैज टर्न्ड इनटू पेशेंस, इट हैज टर्न्ड इनटू पीस। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, तो ये यूआई फोन्स के साथ भी। जब नए नए आए थे ना, तो हमें पता नहीं था कि हम इसे किस लेवल तक इस्तेमाल कर लेंगे, और एक सर्टन पॉइंट के बाद तो हम फोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, फोन हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रियली हैज हैपेंड इन आवर लाइव्स, नहीं क्या? चलो जी, विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s का प्यार और इजहार मुंह से नहीं हुआ करता था, गानों से हुआ करता था.
2: ये है 90 की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और यार 90s का वो जमाना ऐसा था जहाँ पर किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं होती थी. अगर आपको कोई पसंद है और उससे इजहार करना है अपनी फीलिंग्स का, तो सिंपल होता था, एक सीडी जो है वो बंदा अपनी बंदी के लिए राइट करके भेज दिया करता था, और उस सीडी के अंदर वो सारे गाने हुआ करते थे जो कि सिर्फ गाने नहीं, उसके दिल की जुबान हुआ करते थे. आज के जमाने में तो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट और यूट्यूब लिंक्स भेजना आम बात है, लेकिन 90s और अर्ली 2000s के प्यार में एक अलग ही मजा था. एक ब्लैंक सीडी लेकर उस पर खत की तरह अपने दिल के गाने लिख देने वाली बात हुआ करती थी, और वो सीडी एक प्यारे से नोट के साथ लड़की तक पहुंचा दी जाती थी. ये एक ऐसी लव लैंग्वेज थी जो बिना बोले सब कह जाती थी. और सबसे बड़ी बात, जो गाने आप सीडी में डालते थे ना, उनमें आपकी फीलिंग्स छिपी होती थी. कोई अगर पहला नशा सुनाए तो समझ लीजिए कि बंदा सच में प्यार में है. तेरा चेहरा या तुम मिले दिल खिले जैसे गाने अगर किसी ने आपके लिए चूज किए, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है. आज भी अगर आपके पास वो पुरानी सीडी संभाल कर रखी है ना आपने, तो समझना कि किसी का दिल उनमें बसा था. क्या आपने कभी किसी के लिए एक स्पेशल सीडी बनाई थी, या आपको कभी किसी ने एक सीडी दी जो आज भी यादों में बसी है? मुझे जरूर बताइएगा DM करके ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. और फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर ब्लू वाली गम की बोतल,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करके ना आज दिल की उंगलियां उन गलियों में खो गई हैं जहां तुम्हारी महक और स्पंज वाली टोपी वाली जो ठंडी नमी थी ना वो हमारे बचपन का हिस्सा हुआ करती थी। स्कूल के दिनों में जब प्रोजेक्ट्स और चार्ट पेपर पर हमारा टसल चलता था तब तुम्हारी चिपचिप हर कदम पर हमारा साथ निभाया करती थी। स्पेशली तब जब रात के 10 बजे ये याद आता था कि मम्मा एक प्रोजेक्ट दिया था मैम ने, कल सबमिट करना है। तुम्हारे ढक्कन में लगी हुई वो मुलायम सी जो स्पंज थी ना जिसे अक्सर हम खेल खेल कर उंगलियों से दबाते रहते थे, वो बड़ी याद आती है यार। तुम्हारी खुशबू वो तो आज भी दिमाग के किसी कोने में बसी हुई है, वही हल्की मीठी ठंडी ठंडी और जानी पहचानी सी जो बचपन की मासूमियत और बेफिक्री भरी दुनिया की याद दिलाती है। तुम बस एक गोंद की बोतल नहीं थी बल्कि हमारी क्रिएटिविटी की साथी, हमारी मेहनत की गवाह और कभी कभी किताबों के पेजेस के बीच चिपकाई गई एक यादगार दोस्त भी हुआ करती थी। तुम्हारी जगह आज नई नई ग्लू स्टिक्स और फैंसी गोंद की बोतलों ने ले तो ली है, लेकिन जो अपनापन तुम्हारे साथ था ना वो कहीं और महसूस नहीं होता यार। शायद अब तुम दुकानों में कम नजर आती हो लेकिन हमारे बचपन की यादों में तुम अक्सर नजर आती हो। तुम्हारे बिना स्कूल प्रोजेक्ट्स की वो भाग दौड़, दोस्तों के साथ तुम्हारे ढक्कन को घुमाकर खोलना और कभी कभी गलती से हाथों पर गोंद लगाकर उंगलियों से उसका छिलना अधूरा सा लगता है। और वैसे पता है क्या, तुम्हारी एक बड़ी खास बात हो चुकी है, अब तुम अपनी पर्सनालिटी की तरह हमारी यादों से भी चिपक गई हो। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में प्यार तूने क्या किया का टाइटल ट्रैक इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में प्यार करने के बाद ये पूछा ना होगा कि प्यार तूने क्या किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्यार में पड़ जाते हो ना, तो आपको जो प्यार के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जब नजर आने लग जाते हैं ना, तो वाकई में आप ये सवाल कर रहे होते हो कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। रातों की नींदें जो है वो गायब हो जाती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है, सिर्फ एक चीज के ऊपर पूरी तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो, और वो होता है वो इंसान जो आपके ख्यालों में घर कर चुका होता है। तभी तो ये सवाल आता है कि प्यार तूने क्या किया। हालांकि जब प्यार होता है ना बॉस, तो बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, पेट में ना हमेशा बटरफ्लाइज होती है, एंड तभी इंसान जो है ना वो ये भी सोच रहा होता है कि एक ही पल में अचानक दी है नई दुनिया, दी है नई खुशियां। जब भी मेट की गीत नहीं बोलती है कि मुझे आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ, वैसे ही प्यार में पड़ रहे इंसान के साथ भी होता है कि उसको ना किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्यार में होता है। और जब इंसान प्यार में होता है ना, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ एक ही चीज से खुशी मिलती है, एंड दैट इज दैट वन पर्सन। जिसका बस कॉल आ जाए तो दिन बन जाता है, जिसकी फोटो देख लो तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो और आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता है आसपास वाले लोग क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है या बुराइयां कर रहा है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो उस तरफ जाएगा ही नहीं ना यार। दिन तो आपका हमेशा ऑन द हाई ही रहता है, इनफैक्ट दिन जो है वो लो पर भी बहुत ज्यादा जाता है, बिकॉज देयर इज अ टाइम जब आपको ये लगता है कि यार अभी तक उसका फोन नहीं आया, अभी तक उसका मैसेज नहीं आया। 100 बारी एक ही मैसेज को पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार वो मैसेज में क्या लिखा था, एक बार पढ़ के खोल के देख लेती हूँ। एंड तभी इस गाने की ये लाइन आती है कि तू दे रहा है एहसास ये जैसे कोई मेरे पास है, वाकई में प्यार तूने क्या किया। और जाते जाते यही गाना आपके लिए चलाती भी जा रही हूँ, आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट।

अक्सर सोलो ट्रैवल करते हुए जब मैं कपल्स को साथ में घूमते हुए देखती हूँ तो दिल को बहलाने को गालिब यही सोच लेती हूँ कि प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, आजादी ज्यादा प्यारी है ना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये जो इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, आपके दिल और दिमाग के साथ खेलते हैं, क्योंकि फिर मैं कपल्स को जब स्वीट नथिंग्स में इंडल्ज होते हुए देखती हूँ, खूबसूरत नजारों को साथ में देखते हुए देखती हूँ, कभी कभी लगता है कि हाँ कंपेनियनशिप होनी चाहिए। फिर दिल में ख्याल आता है वो जो गाना हम अभी सुनने वाले हैं। बाय द वे ये गाना जो कंपोज किया है SD बर्मन साहब ने, इसका जो आइकॉनिक माउथ ऑर्गन वाला म्यूजिक है वो माउथ ऑर्गन प्ले किया था RD बर्मन ने। आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, दिस आइकॉनिक सॉन्ग राइट हियर ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

इनकी लज्जत।

भाई वैसे तो लाइफ में इस गाने का वीडियो देखने को हमको बहुत देर बाद मिला, ये जॉनी मेरा नाम का जो गाना है हुस्न के लाखों रंग, क्योंकि छोटे होते इस तरह के गाने आपको मतलब दिखाए नहीं जाते थे ना, चैनल चेंज हो जाता था कि यू वर नॉट अलाउड टू वॉच सच सॉन्ग्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब भी देखा और पता चला कि इसमें जो डांस कर रही हैं पद्मा खन्ना जी, शी इज द सेम एक्टर जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में कैकई का रोल किया था, तो माई माइंड वॉज ब्लोन। क्या रेंज होती थी पुराने एक्टर्स की भाई। एंड सेम विद अरुणा ईरानी जी, आई थिंक उनको 90s में हमने देखा दिल तो पागल है फिल्म में, वो माधुरी दीक्षित टीचर का रोल प्ले करती हैं, डांस टीचर का रोल। देन बेटा फिल्म में उनका जिस तरह का रोल था, एंड देन फिर कारवां के गानों में जब उनको देखा तो लगा कि ओह माय गॉड ये क्या टेरिफिक बंदी है। वैसे बोथ पद्मा खन्ना जी एंड अरुणा ईरानी जी क्लासिकल डांस में वेल ट्रेंड रही हैं। कारवां का ये अमेजिंग गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

भाई ये भली भली भोली भोली जो सूरतें हैं ना, यही खेल कर जाती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो क्या गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक शेर भी है सदा अम्बालवी का, हैं जितनी खूबसूरत उतनी ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन हसीनों की अदा देखो। वैसे बंदियों को, हसीनों को क्यों हमेशा ऐसे बेवफा कहा जाता है यार, बंदे भी होते हैं। तो इसको हम थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, हैं जितने खूबसूरत उतने ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन आशिकों की आशिकी देखो। और फिलहाल हम एक आशिक के दिल का दर्द यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

मैं ना वो गाने सोच रही थी जिनमें पहला लफ्ज आता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ज्यादातर मेरे जहन में 90s के गाने आ रहे थे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, हम आपके हैं कौन का, या जो जीता वही सिकंदर का, पहला नशा पहला खुमार, या साजन फिल्म का था पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया, या संघर्ष फिल्म का पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, फिर वो MP3 का गाना था मेरा पहला पहला प्यार है ये, और एक कुमार सानू का भी था पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा पहली ये मुलाकात है, एक और था पहले प्यार का पहला गम पहली बार है आंखें नम। तो ऐसे सब 90s के गाने ध्यान में आ रहे थे, बहुत पुराने गाने ऐसे कोई खास नहीं आ रहे थे। एक दो जो ध्यान में आए, एक तो लेके पहला पहला प्यार, या आज उनसे पहली मुलाकात होगी, या फिर ये वाला जो हम सुनने वाले हैं 1979 की फिल्म और कौन का ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

आपको पता है 1982 की फिल्म शक्ति में गाने रखे जाएं या नहीं, इस पर बहुत सोच विचार किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि राइटर सलीम जावेद का ये मानना था कि इसमें जो मेन किरदार था अमिताभ बच्चन साहब का, वो इतना कोल्ड एंड क्वाइट टाइप का बंदा दिखाया गया था। दिलीप कुमार साहब उनके फादर प्ले करते हैं, उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप दिखाया गया था वो एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप था। तो ऐसा बंदा जो ऐसे नाराज सा है सबसे, वो गाने थोड़ी ना गाता फिरेगा स्क्रीन पे, ऐसा सलीम जावेद राइटर्स का मानना था। लेकिन डायरेक्टर साहब रमेश सिप्पी, उनको ऐसा लगा कि कुछ गाने होने चाहिए, फिर एंड टाइम पे गाने जो है बनाए गए। और इसका वो जो एक गाना है, क्या सुपरहिट एवरग्रीन गाना है वो, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वैसे ये जो इसका एक और गाना हम सुनने वाले हैं, ये भी कोई कम नहीं है। क्या गाया है लता जी ने, क्या लिखा है बख्शी साहब ने, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बख्शी साहब का गाना हमने सुना जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और जो अगला गाना ये भी बख्शी साहब का लिखा हुआ है, सनी फिल्म का गाना, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। अहदे वफा मतलब वफा करने वाले, वादा निभाने वाले। इस पर एक शेर भी था, एक बेवफा से अहदे वफा करके आए हैं, अब आके सोचते हैं ये क्या करके आए हैं। क्या आप भी ऐसा करके आए हैं? मत करो बेवफा लोगों से वफा। इसी गाने की आगे लाइंस हैं ये जो सनी फिल्म का गाना है, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

आपको पता है 1981 की फिल्म लव स्टोरी जब रिलीज हुई थी, जो कुमार गौरव और विजेता पंडित की डेब्यू फिल्म थी, तब विजेता पंडित वॉज नॉट इवन 14 ईयर ओल्ड। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब ये पुरानी फिल्मों में चाइल्ड लेबर कराया जाता था। वो 8th क्लास में थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा था कि माला सिन्हा चाहती थी कि उनकी डॉटर प्रतिभा सिन्हा इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ लॉन्च हो, पर राजेंद्र कुमार जी ने मना कर दिया या बात नहीं बनी, क्योंकि प्रतिभा सिन्हा तब सिर्फ 12 साल की थी। मतलब ये फिल्मी सितारों के जो बच्चे, इनके मतलब पैदा होते से यही सपना हो जाता होगा ना हीरो हीरोइन बनने का। खैर सपनों का क्या है, सपने तो सभी देखते हैं, किसी के पूरे हो जाते हैं, किसी के टूट जाते हैं, होता है चलता है दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, इट्स अ म्यूजिकल ब्रेक। गाना सुनेंगे हम लव स्टोरी फिल्म का ही। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi, it's hot. Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

तो अभिमान फिल्म का वो जो सुंदर सा गाना है ना, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो उसके सारे गाने सुंदर हैं, लेकिन वो जो गाना है मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, जो गाया है लता मंगेशकर जी एंड मनहर उदास जी ने। तो ये ओरिजिनली ना लता जी के साथ मुकेश जी गाने वाले थे गाना, लेकिन मनहर जी ने एक डेमो वर्जन रिकॉर्ड किया और ये डेमो वर्जन सबको इतना पसंद आया तो यही डिसाइड हुआ कि उन्हीं की आवाज रखी जाएगी। तो मजरू साहब का लिखा हुआ, SD बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

उफ उफ उफ उफ इंतजार, क्या क्या लिख गए इंतजार पे लिखने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गालिब ने कहा है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। विसाले यार मतलब यार से मिलना। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। सीमाब अकबराबादी ने कहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। मुनीर नियाजी साहब ने लिखा है, ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है मैं इंतजार में हूँ। चलिए इंतजार पे ही हसन कमल साहब की लिखी हुई ये खूबसूरत गजल सुनते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

सुंदर गाना भूली बिसरी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना तो देखो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी ऐसी भूली बिसरी फिल्म का है। सीरियसली, मतलब मुझे ऐसे लगता था ये गाना किसी राजेंद्र कुमार माला सिन्हा टाइप की फिल्म होगी, उसका है। बट दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू अ मूवी कॉल्ड वापस, 1969 की ये मूवी है, जिसमें अलका अजय नाम के एक्टर्स थे। ऑनेस्टली मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला। बट ये गाना कितना पॉपुलर है, ये फ्रेज कितना पॉपुलर है, एक तेरा साथ, कई बार ट्रक के पीछे भी लिखा होता है 1137, एक तेरा साथ। मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये गाना लिखा हुआ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, एंड ब्यूटीफुली संग बाय लता जी एंड रफी साहब। और अगला गाना अगेन अ ब्यूटीफुल डुएट बाय लता जी एंड रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Energy. It's hot.
1: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

ओ भाई, मैंने 1968 की फिल्म दो कलियां वापस से देखी और मजा आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और सबसे मजेदार प्यारी उसमें नीतू सिंह जी एज चाइल्ड एक्टर, बेबी सोनिया नाम से वो काम करती थी ना एज अ चाइल्ड एक्टर। तो उसमें वो दो जुड़वा बहनों का रोल प्ले करती है जो बचपन में अलग हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। फिर बड़ी होकर जब ये दोनों मिलती हैं तो रोल स्विच कर लेती हैं, मम्मी वाली पापा के घर चले जाती है, पापा वाली मम्मी के घर चले जाती है ताकि इन दोनों के पेरेंट्स वापस मिल जाएं। अभी एक्चुअली एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, 1965 की एक तमिल फिल्म थी विच वॉज बेस्ड ऑन 1961 की एक अमेरिकन फिल्म द पेरेंट ट्रैप, विच अगेन 1949 के एक जर्मन नॉवल लीसा एंड लॉटी पर बेस्ड थी। ये नॉवल लिखा था एरिक कास्नर ने। खैर, बैक टू दो कलियां। इस फिल्म का ये गाना सुनेंगे, संग बाय लता जी एंड रफी साहब, कंपोज्ड बाय रवि जी एंड रिटन बाय साहिर लुधियानवी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

आपको पता है 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने, जिसमें देवानंद और नूतन लीड रोल्स में थे, उसमें संजय खान की फर्स्ट वाइफ जरीन खान जो थी, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जरीन खान, जायद खान और सुजैन खान इनकी मम्मा। एक्चुअली वो एक मॉडल थी, फिर बाद में वो इंटीरियर डिजाइनर भी बनी, लेकिन उन्होंने एक दो फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें से एक ये थी तेरे घर के सामने। इसमें इन्होंने जेनी नाम का एक रोल प्ले किया था, बट एक्टिंग उनको ज्यादा रास नहीं आई। हर किसी को एक्टर नहीं बनना होता है, और अभी यहाँ पे आप बात बना दीजिए। मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और सुनते हैं खूबसूरत गाना।

0: भाई फिल्म दृश्यम के डेड बॉडी वाले सस्पेंस से भी ज्यादा सस्पेंस चल रहा है फिलहाल मेरे ऑफिस में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिट्यूंडन हो आप एंड बड़े खुश नसीब होंगे अगर आपके यहाँ अप्रेजल का सीन निपटा दिया गया है। कम से कम तसल्ली तो हो गई कि भैया यही मिला है और जो सोच रहे थे वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो पता नहीं एक महीने से क्या ही बिरबल की खिचड़ी पकाई जा रही है क्योंकि उसका अता पता बिल्कुल नहीं चल पा रहा। कुछ तो है जो बहुत भयंकर होने वाला है ऐसा फील हो रहा है हमारे बॉसेस के चेहरों को देख कर। लेकिन जब तक 1-to-1 पे नहीं बैठेंगे तब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तब तक सोचते रहिए, गेस करते रहिए, अनुमान लगाते रहिए। बाकी इस लेवल के सस्पेंस वाला सीन आपकी जिंदगी में कहां चल रहा है? मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके बताइएगा जरूर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: मुझे पे ट्यून हो आप और मेरी बात सच है यार, मतलब आजकल कोर्टरूम ड्रामास का अलग क्रेज चल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। इफ यू गो बैक इन द टाइम, जॉली LLB, उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस, फिर मामला लीगल है, भाई द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ चुका है एंड दैट इज सिस्टम। हाँ जी, ये अपकमिंग फिल्म है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के साथ साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका लीड रोल निभाते नजर आने वाली है। फिल्म का ट्रेलर इज ऑलरेडी आउट एंड ट्रेंडिंग, विच इज एन आउट एंड आउट कोर्टरूम ड्रामा जहां जस्टिस इज टेस्टेड by money, influence and personal ambition. Film ka OTT release hone wala hai 22nd of May ko, and not to mention movie ko direct kiya hai Ashwini Iyer Tiwari ne, Sonakshi aur Jyotika ke alawa आशुतोष गोवारिकर जो अभी तक फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया करते थे वो परफॉर्म भी करने वाले हैं, एंड हरमन बावेजा जिन्होंने एज एन एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी हिंदी इंडस्ट्री, उन्होंने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले पे काम किया है। इंटरेस्टिंग राइट? अब 22 मई को पता चल जाएगा कि आफ्टर ऑल फिल्म किस लेवल पे इंटरेस्टिंग है। टिल देन मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।